0: प्रोप्राइटर दीपक गैरे, ओम फर्निचर एन्ड फर्निसिङ उद्योग शोरूम,
1: ब्यास 3 दुर्गा मन्दिर लाइन मेन रोड दमौली,
0: फर्निचर उद्योग,
2: ब्यास 11 मुसे खोला 10 भाइ नयाँ पुल,
1: मोबाइल नम्बर 9816466683,
3: 9565342434।
4: 94.2 दमौली FM समुदायको आवाज।

0: हेलो सृजना,
1: हमें छुट्टियों को बरसों दिन भाई सके हो, फिर माँ संग कीना नाजी कुनो खोल दे छो।
0: जी भाई ने तीमी माया करे कमान से ताऊ।
1: तीमी ये उटा विवाहित मची हो, फिर पनी मेर पोछ लक्षो मने, मत फिर पनी गोड़ा सक्षो, मुझे भी ना।
0: हेलो सृजना।

0: Willingo festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps international net TV साथ में dual band router, Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set-top box. मात्र रु 1200 प्रति महीना में. शर्तहरु लागू हुने छन्. छिटो बनेकै Willing.
1: Sincerely, it's your own Damoli FM 94.2 MHz.

भर्ना खुल्यो। गण्डकी प्रदेशको एक अग्रणी उच्च शैक्षिक सामुदायिक संस्था QAA मान्यता प्राप्त आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँमा शैक्षिक सत्र 2083-84 को लागि वार्षिक सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीए बीबीएस र बीएड नेपाली अंग्रेजी गणित र विज्ञान र सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीबीए र बीआईसीटी मा अध्ययन गर्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरूले समयमा नै प्रवेश परीक्षा इन्ट्रान्स फार्म भरी आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नु हुन सूचित गरिन्छ। बीबीए को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 19 गते सम्म। बीबीए को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 श्रावण 23 गते बिहान 8 बजे। बीबीए को कक्षा सञ्चालन त्रिवी अनुसार। बीबीए को जम्मा सिट संख्या 66 जना। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 25 गते सम्म। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 भाद्र 5 गते दिउँसो 1 बजे। बीआईसीटी को कक्षा सञ्चालन 2083 भाद्र 31 गतेदेखि। बीआईसीटी को जम्मा सिट संख्या 33 जना। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा फारम 2083 असार 24 गते सम्म। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा 2083 असार 25 गते बिहान 8 बजे। बीए बीबीएस र बीएड को कक्षा सञ्चालन 2083 श्रावण 5 गते सम्म। क्याम्पस प्रमुख आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँ। विस्तृत जानकारीका लागि वेबसाइट www.adikavicampus.edu.np। आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस व्यास 1 विज्ञान चौर तनहुँमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 0665900096, 98562-67, 98562-2528।

0: हलचला टाइम चेक। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बेलुकीको 5 बजे।
1: यस टाइम चेक का प्रायोजक दीर्घायु हस्पिटल प्राली तिलोतमा 5 मणिग्राम रूपन्देही।
2: के तपाईलाई गर्दन वा कम्मरमा नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, मुख बांगिने, एलर्जी, छाला